0: ओम शांति ओ 2007 और ब्लॉकबस्टर, एक गाना जो लगभग 50 साल पहले लिखा गया था पर शाहरुख ने उसे इमॉर्टल बना दिया। ऋषि कपूर इजंट विद अस एनीमोर, मगर बॉलीवुड उन्हें कभी भूलने नहीं देगा एंड आई लव देम फॉर इट, इट विल कीप हिम अलाइव। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ खत्म नहीं होती। नंबर 9 पर इस हफ्ते है सैयारा, जिसका दिल मोहित चौहान की उस आवाज में धड़कता है जो एक था टाइगर में सुनाई दिया था। पुरानी रू नया टेक, हमेशा से हमेशा तक। दिस इज सैयारा बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 9।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 7
2: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दान ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

गुड़ खालिया गुड़ वाली चा किन पीती बुआ जी का नाला किन खिचया खिच के मर किन सीट।

0: Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh God, one more remix.

मिर्ची, इट्स हॉट।

Energy. It's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज। गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: Number 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे करेगा। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, फॉलो करना एकदम फ्री है। मुझे पता है आप फोन ही चला रहे थे अपना, @RJKareka और इंस्टाग्राम पर आके क्विकली से हेलो। कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप। कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे। बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, क्योंकि ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना। गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलॉन्ग विद कुटले खां एंड रैविटोर। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi।
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है RJ Kanika। This is the show जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। Instagram पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है, इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम। कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है। लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कभी भी खुल जाता है। अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में। वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के चैप्टर नंबर 2019 में जा पहुंची। वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था।
2: वास्ते जा भी दूं, मैं गवाह मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं।
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे। एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। आई रिमेंबर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर। इनफैक्ट गाना इंडी टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज नंबर 1 सॉन्ग। इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने YouTube पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है। जहां इट डजंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप ये गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा। ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है। दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: What a song! Tanishq Bagchi की composition है, ध्वनि भानुशाली है निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई. Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans, मैं एक indie pop quiz पूछूंगी आपको. It's a difficult one. At RJ Kanega on Instagram पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके at RJ Kanega पर बताओ. मेरे को full confidence है आपको पता होगा. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. The social media sensation गाने का नाम है Shisha. मिट्टर और की आवाज इनकी composition. मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज में Shisha is playing right next for you on Gaana number 5. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है Kanega. Enjoy.
1: Number 5.

0: Energy. It's hot. Only on Mirchi. It's hot.
1: Number 5.

तेज हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। That's it. That's his subscriber count. लेकिन वो acoustic गिटार जो इतना aggressive है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। The song isn't soft, it's not gentle, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत। नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म, एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price, and that is something that could be deeply upsetting, because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it, or have they been paid for it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me, and because even I'm sometimes paying for it, so I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो। सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर। और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर वन है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

पेस्ट्री सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल सबसे मैं हूँ टेस्टी सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से दिल का शिकार कर हनी जरा प्यार

Mirchi. It's hot.

यार कभी कभी ना वेदर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, जस्ट लाइक माय एक्स. गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब वेदर का हाल चाल पता कर लेते हैं. स्वेटर वेदर अलर्ट है टुडे. राइट नाउ द टेम्परेचर इज अराउंड 49 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स मोस्टली क्लाउडी, लेकिन विंड जो है उसकी बदौलत 46 डिग्रीज फील हो रहा है हमें. क्लाउड्स आर स्टिकिंग अराउंड ऑल डे लाइक दैट वन रिलेटिव हु सेज बस 5 मिनट में निकलते हैं एंड देन स्टे टिल डिनर. टुडेज हाई इज ओनली टचिंग 62 डिग्री Fahrenheit, which is way lower than yesterday's random overachiever high, which was 75 degrees Fahrenheit. Yesterday काफी मायावी की energy थी and today it's giving Seattle. Good news though, there is barely any rain drama. Last 24 hours में we saw only 1 millimeter of rain and next 24 hours में zero precipitation है. So today be layer का player again, hot chai and breakfast के साथ pretend that you are working. ढेर सारा पानी पियो, keep yourself hydrated and wear your sun protection SPF 50 plus. प्लस प्लस प्लस के साथ में ऑफ कोर्स मिर्ची को ट्यून्ड इन रखो, क्योंकि मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हूँ. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अब हम बातें करने वाले हैं आज के दिन के बारे में, लेकिन रिवाइंड करके 1812 में द वॉल्स डांस एंटर्ड इंग्लिश बॉलरूम्स। मतलब बिफोर रील्स एंड शादी की कोरियोग्राफी, पीपल वर ऑलरेडी स्पिनिंग ड्रामेटिकली फॉर अटेंशन। 1857 में इंडियन रिबेल्स सीज्ड दिल्ली ड्यूरिंग एन अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। Fast forward to 1926, humans completed the first flight over the North Pole. Imagine explaining that to your nanny in 1926. And 1928 mein our very own NY got its first television station. और तब से लेकर आज तक लोग टीवी से चिपके हुए हैं। 1949 में द बर्लिन ब्लॉकेड एंडेड, गिविंग यूरोप अ ह्यूज साई ऑफ रिलीफ आफ्टर 10th टाइम। एंड देन इंडिया मेड हिस्ट्री इन 1998 विद द पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट। एंड इसीलिए आज का दिन इंडिया में सेलिब्रेट होता है एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ऑल्सो आज के दिन वो लोग अपनी मम्मा को कॉल कर सकते जिन्होंने Completely कल कॉल करना अवॉइड किया है। Yesterday was Mother's Day and you can share with me तुमने अपनी मम्मा का दिन स्पेशल कैसे बनाया। मुझे DM करो Instagram और X पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS, और WhatsApp कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot.
1: This is something.

Good morning, my fabulous people. This is your girl Priscilla on Mercy Mornings. और अब तुम्हारी चाय से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टी मेरे पास है. So today's cutest update comes straight from Katrina Kaif, who just celebrated her very first Mother's Day after welcoming baby boy Vihan. Last November में उन्होंने हबी विकी कौशल के साथ ये अनाउंसमेंट किया था. And honestly, the internet collectively went oh. Katrina shared this super sweet glimpse of her Mother's Day surprise, जिसमें फ्लावर्स थे, हैंडरिटन नोट था एंड प्योर सॉफ्टी एनर्जी थी. द नोट सेड, हैप्पी फर्स्ट मदर्स डे माय लव, साइंड लव विहान एंड पापा कौशल. एक्सक्यूज मी, पापा कौशल? सर, दिस इज अडोरेबल बट ऑल्सो वेरी डेंजरस. एक्सपेक्टेशंस फॉर मेन आर नाउ एट एन ऑल टाइम हाई. समवेयर अ गाय जस्ट फॉरवर्डेड HMD टेक्स्ट एंड थॉट ही डिड इनफ फॉर मदर्स डे. लेकिन ऑनेस्टली यार, ऐसे टाइनी होलसम मोमेंट्स से ही लाइफ और अच्छी बनती, स्पेशली फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग अवे फ्रॉम द फैमिली इन द US. एक क्यूट मैसेज से घर का माहौल सडनली चेंज हो जाता है. लेट मी नो वो क्यूट मैसेज कौन भेजता है तुम्हें, या तुम किसको वैसे क्यूट मैसेजेस भेजते हो. DM करो मुझे इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, क्योंकि क्यूट मैसेज तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, राइट? और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 9033 मर्ची पर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

मॉर्निंग मैं समोसा लवर्स, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में सुन रही मिर्ची मॉर्निंग। और अब वो शो शुरू हो चुका है जो तुम्हारी चाय से ज्यादा कड़क और कॉफी से ज्यादा गर्मा गर्म है और ब्रेकफास्ट से ज्यादा क्रिस्पी है। आज का मूड बड़ा सिंपल है, सर्वाइव मंडे विदाउट कंप्लेनिंग। तो फिलहाल इफ यू ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू वर्क या फिर एक्चुअली वर्किंग, मैं बोले तो प्रिसला तुम्हारे साथ में हूँ एंड आई सी यू दोस्त। आज का शो शुरू हो चुका है जहाँ पर बॉलीवुड के देसी बीट्स तो है, साथ साथ में तुम्हें ढेर सारी स्पाइसी स्टोरीज मिलने वाली है। अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है ये सब कुछ पता होने वाला है। अभी के लिए मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग मैं दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स, मेरा नाम है प्रिसिला। सबसे पहले अ पावरफुल मोमेंट फ्रॉम ट्रिनिडाड। ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर्स विजिट, ट्रिनिडाड्स इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसेसर स्पोक अबाउट हाउ इंडियंस देयर आर स्टिल समटाइम्स कॉल्ड कूलीज, बट शी प्राउडली सेड टुडे अ लिटिल कूली गर्ल इज नाउ प्राइम मिनिस्टर। एंड नंबर टू पर तमिल सुपरस्टार विजय हैड अ स्लाइटली फिल्मी मोमेंट ड्यूरिंग हिज चीफ मिनिस्टर ओथ सेरेमनी इन तमिलनाडु। अपेरेंटली ही वेंट अ लिटिल ऑफ स्क्रिप्ट वाइल taking the oath and the governor had to politely remind him about the official protocol. Arre bhai, actor instincts kicked in. Once a hero, always dramatic timing. Meanwhile, social media also went on full detective mode after actress Trisha attended the ceremony. Internet people seriously need hobbies and hydration. And number three per, a sad one coming in from the US. Indian techie Chiranjeevi Kola sadly passed away after battling valley fever, which is a fungal lung infection linked to spores found in soil, especially in parts of California. He was just 37 years old. That's a reminder to really not ignore persistent health symptoms. Sending prayers and strength to his loved ones. And that's it for your Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that is 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैमिली, दिस इज योर गर्ल प्रिसिला विद यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब चाय से ज्यादा गर्मा गर्म टी मेरे पास है। सो मुंबई इंडियंस रिसेंटली ट्राइड टू काम ट्विटर डाउन। रूमर्स वर फ्लाइंग अराउंड अबाउट अ पॉसिबल रिफ्ट बिटवीन एमआई एंड कैप्टन हार्दिक पांड्या आफ्टर ही वॉज मिसिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेशंस। बट एमआई हेड कोच महेला जयवर्धने सेड, Relax, boys. Apparently, Hardik's dealing with a back issue and the medical team didn't want to risk pushing him too hard. He hasn't been training for the last few days and they are monitoring him day by day. अब ऐसे आड़े तेरे डांस करेंगे अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो यही होगा, right? Hopefully, Hardik recovers soon because IPL without drama is impossible. But IPL without Hardik, that's like biryani without masala. And speaking of masala, जो हमारी लाइफ में सिर्फ हमारी मम्मा ऐड कर सकती है। और भाई कल मदर्स डे था एंड शाउट आउट टू तनिष्क। दिस मदर्स डे वो लेकर आए हैं तुम्हारे लिए 20% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड। तो अगर तुम्हारी मम्मी को 18 कैरेट से अबव ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कराना है तो मदर्स डे के सेलिब्रेशन में लेकर जाओ उनको तनिष्क पर, वहां पर जाकर गोल्ड एक्सचेंज करा सकते हैं विदाउट एनी डिडक्शन। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है और अभी आने वाले एमर्जी दर बैंगर्स ओनली फॉर यू। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Okay, imagine being born on the same day as Sabrina Carpenter. मतलब योर बर्थडे ऑलरेडी कम्स विद द मेन कैरेक्टर एनर्जी. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज योर बर्थडे शाउट आउट. सो आज अगर तुम्हारा बर्थडे है तो तुम किसके साथ शेयर करो? सबसे पहले सबरीना कार्पेंटर हु इज टर्निंग 26 टुडे, एंड देन वी हैव गॉट एक्ट्रेस लाना कॉन्डोर, एंड देन शाउट आउट टू लेजेंडरी एक्ट्रेस शोरे अगडाशलू. फ्रॉम द देसी साइड वी हैव गॉट एक्ट्रेस अदा शर्मा, पंजाबी सुपरस्टार एमी वर्क एंड सिंगर एक्टर अमरिंदर गिल, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है. मतलब आज के दिन टैलेंट, ड्रामा, म्यूजिक, मस्ती, स्वैग सब कुछ है, जस्ट लाइक मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड कैन वी टॉक अबाउट हाउ बर्थडे पीपल ऑलवेज एक्ट शॉक्ड व्हेन एवरीवन सिंग्स फॉर देम? लाइक ब्रो, यू पोस्टेड काउंटडाउन स्टोरीज फॉर 3 weeks. वी वर प्रिपेयर्ड. सो वेदर सेलिब्रेटिंग विद केक एंड चाय एंड अ ग्रैंड पार्टी और जस्ट सर्वाइविंग एडल्टहुड विद वन समोसा एट अ टाइम, टुडे इज योर डे. ओके, सो ईट दैट केक, इग्नोर द कैलोरीज एंड ऑफ कोर्स सुनते रहो मिर्ची, मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ. मिर्ची मॉर्निंग्स पर बने हुए हो तुम, एंड अभी जाकर इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझसे कनेक्ट करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी चलाते हैं मिर्ची, दे आर बैंगर्स तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: आई होप प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर सोना एंड चांदी का रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,700 पर ट्राउंस, $4,700 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में, बिना किसी हिडन फी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। राज ज्वेल्स की टीम के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दे। कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमने सुना। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची तार गानों की बारी है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

0: देखो 3 बजे रात को ना मैं अपनी लाइफ को जब फिक्स करने का सोचती हूँ तब मैं सितारों के बारे में जरूर सोचती हूँ, और वो सितारों के बारे में जो मैं सोचती हूँ अभी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में।
1: मिर्ची राशि जोन
0: इरीज यानी मेष राशि, केयरफुल व्हाट यू विश फॉर टुडे, ओके? यूनिवर्स इज इन फाइन टेक इट देन वाला मोड, डोंट मेक इम्पल्सिव चेंजेस टुडे। आज का लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 19। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, दैट थिंग स्ट्रेसिंग यू आउट टुडे सडनली इट विल मेक सेंस एंड यू विल वंडर व्हाई यू लॉस्ट स्लीप ओवर समथिंग लाइक दैट, क्लासिक ओवरथिंकिंग बिहेवियर। लकी कलर तुम्हारा है सिनेमन ब्राउन, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, पॉजिटिव पीपल आर एंटरिंग योर वाइब टुडे, प्रोटेक्ट दिस एनर्जी लाइक आंटीज प्रोटेक्ट देयर सीक्रेट बिरयानी रेसिपीज। लकी कलर इज लेमन येलो, लकी नंबर इज 27। कैंसर यानी कर्क राशि, सडन चेंजेस अहेड बट रिलैक्स, दिस इज ग्लो अप एनर्जी नॉट केओस एनर्जी, ट्रस्ट द प्रोसेस इवन इफ it arrives wearing Crocs. Lucky color is cream color, lucky number is 11. Leo yani ki Sinha Rashi, work life looking spicy today, somebody finally notices your efforts, matlab validation is loading. Lucky color for you is orange, lucky number is 33. Virgo yani Kanya Rashi, somebody stubborn may annoy you today but honestly don't waste premium emotional bandwidth on basic nonsense, focus on your own magic sweetie. Lucky color is sage green, lucky number is 8. And that's it for first 6 Rashis in Rashi Zone number 1. बाकी बची 6 राशियों को लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो ये मिर्ची दार बैंगर्स एंड जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: जय कन्हैया लाल की।

0: जागृत करने के लिए सेवा मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार। फॉलो मी ऑन माई चैनल।
1: Hey there, my military family, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में। अब बारी है बाकी बची छह राशियों की, इन राशि जोन नंबर टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी तुला राशि, टुडे लक में रैंडमली फाइंड यू। कॉस्मिक कैशबैक ऑफर है आज। यूनिवर्स नोटिस्ड योर गुड कर्मा एंड सेड कीप द रिसीट। लकी कलर फॉर यू इज रोज कलर। लकी नंबर 22। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। पीपल मे डाउट योर प्लान बट योर कॉन्फिडेंस टुडे इज स्ट्रॉन्गर देन योर शाय। कीप पुशिंग। लकी कलर इज क्रिम्सन रेड। लकी नंबर इज 16। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, रिस्क लेने का मूड है। ऑनेस्टली इट मे एक्चुअली वर्क आउट फॉर यू। व्हाइल अदर्स हेजिटेट, you are already halfway to success with snacks pack. Lucky color is indigo. Lucky number is 41. Capricorn yani makar rashi, stay sharp with money matters today. Not everyone deserves blind trust, especially people saying bro, quick investment opportunity, run. Lucky color is charcoal gray. Lucky number is 6. Aquarius yani kumbh rashi, unexpected twists aane wale hain and weirdly you will enjoy them. Tiny chaos is exciting until it becomes group project energy, so balance karo, okay? Lucky color for you is turquoise. Lucky number is 29. Pisces yani mean rashi, time to let go of habits draining your energy. New week, new vibe, new you and less nonsense. Emotional decluttering is the real self-care. Lucky color is lavender. Lucky number is 14. And that's it for Mirchi Rashi Zone number 2. Mere yani ki Prisila ke saath tum ho Mirchi Mornings par. Abhi jaldi se jao Instagram aur X par. Mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Abhi Mirchi there bangers coming up your way. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग माय दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब कर्टन डाउन करने का टाइम आ चुका है, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक सीरियस अपडेट देकर जाती हूँ। अ नोरो वायरस आउटब्रेक रिपोर्टेडली अफेक्टेड 115 पीपल ऑन बोर्ड द कैरेबियन प्रिंसेस क्रूज शिप। दिस इंक्लूड्स बोथ पैसेंजर्स एंड क्रू ऑन दिस 30-night ट्रिप with more than 4,000 people on board. According to the US Centers for Disease Control, the sick passengers were isolated as precautions kicked in. And honestly, desi log on the cruise are built differently. Somewhere one Indian auntie probably said, "Thoda sa kaadha pee lo yaar, you'll be fine." Lekin jokes apart, stomach viruses spread super fast in closed spaces like cruise ships, so hygiene really matters. अगर तुम प्लान कर रहे हो कहीं ऐसी जगह पर जाने का तो वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, स्टे हाइड्रेटेड एंड मेबी डोंट ट्रस्ट दैट सस्पिशियस बूफे पोटैटो सैलड दैट्स बीन सिटिंग देयर लुकिंग इमोशनली टायर्ड। ऑल्सो रिसेंटली अनदर क्रूज रिपोर्टेडली फेस्ड अ हंटर वायरस सिचुएशन which sadly turned serious. So if you're planning vacation mode this summer, just pack smart, stay informed, and maybe carry enough sanitizer to survive both germs and airplane tray tables. And with that, my beautiful people, aaj ka Mirchi Mornings has come to an end. Thank you for hanging out with me through the gossip, giggles, and weather mood swings. Milenge tumhe kal, same time, same place, same frequency. Tab tak ke liye Priscilla says tada bye-bye. Jaakar jaldi se mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 6472 4. फिलहाल stay tuned and stay hot.

0: It's hot. Mirchi. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कटरीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: रोज तैयार होने से दिक्कत है तो फिर सुनो मेरी बात।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. वैसे हमें लगता है कि हम दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अब अगर इस रीजन को बदल दो, कॉज हम दुनिया के लिए तैयार ना होकर जब खुद के लिए तैयार होंगे ना, तो दैट वुड मीन कि हम कॉम्प्लीमेंट्स के लिए तैयार हो रहे हैं और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मूड को अफेक्ट करता है। सोचो इट्स अ ग्लूमी डे, लेकिन आपने तैयार होने में 100% दिया है। यू एंटर योर वर्क प्लेस और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट से नवाजने लग जाते हैं। ग्लूमी डे ऑल ऑफ अ सडन टर्न्स इनटू अ ब्लूमी डे और आप तारीफें सुन सुनकर फूल की तरह खिल उठते हो। तो हाँ, तैयार होकर घर से बाहर निकलना इज नॉट फॉर पब्लिक, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है यार। बस रीजन बदल दो और अपने लिए तैयार होना शुरू कर दो, तो फिर आपको ये जबरदस्ती का काम नहीं लगेगा। यूं नहीं लगेगा कि यार डेकोरम है तो फॉलो करना है। नहीं यार, तैयार हो तो खुद के लिए, अपनी तारीफों के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। ये ना वाकई में आपके दिन की काया पलट सकता है। और अगर आप वो इंसान हो जो डेकोरम को फॉलो ना भी करते हुए तैयार होकर ना भी जाते हो, तो ये ट्राई करके देखो। जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएंगे और आपका दिन जो है वो बेहतर होता चला जाएगा ना, तो आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। चलो अभी फिलहाल के लिए आपको और मेरा दोनों का फायदा देखते हैं और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे कह देती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बिल्लू को बार बार बोलना पसंद नहीं था, इसी वजह से बिल्लू बार बार में से सिर्फ बिल्लू ही रह गया।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये फिल्म ओरिजिनली वाज सपोज्ड टू बी टाइटल बिल्लू बाबर, लेकिन फिर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसके चलते ये डिसाइड हुआ कि यार बिल्लू अब सिर्फ बिल्लू ही रहेगा। एंड ये फिल्म एक्चुअली एक रीमेक की रीमेक है, कमाल की बात है नहीं? सो ये फिल्म बनी थी मलयालम में, जिसका नाम था कढ़ा पारायुम्बुल। अब मुझे नहीं पता कि इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन एक्चुअली ये फिल्म फिर तमिल में बनी। कोसेलन नाम की एक मूवी बनी थी जिसमें कि रजनीकांत द थलाइवा उन्होंने काम किया था, एंड देन ये फिल्म बनी हिंदी में बिल्लू के नाम से। एंड पता है क्या, इस फिल्म को ऑथेंटिक लुक देने के लिए इसका शूट जो है, जो सेट बना था, वो शूटिंग करने के लिए किसी मुंबई के फिल्म सिटी में या हैदराबाद के किसी फिल्म सिटी में नहीं बना था। इट वॉज एक्चुअली अ सेट कंस्ट्रक्टेड इन अ विलेज जो तमिलनाडु में था, उसका नाम था पोल्लाची। सो दैट बैकड्रॉप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इस फिल्म का, वो एकदम रस्टिक चार्म देता हुआ निकले। एंड वेल, इट डिड जस्टिस टू द फिल्म। हाँ, मगर इस फिल्म को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा था कि यार इस फिल्म में शाहरुख खान के होते हुए इरफान खान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? उसके पीछे भी एक वजह है जिसको मैं बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बिल्लू मूवी के लिए आपको पता है इरफान खान को किसने ढूंढा था? नन अदर देन शाहरुख खान ने।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इट वाज शाहरुख खान जिन्होंने की नेमसेक देखने के बाद ये डिसाइड किया एंड ही बिलीव्ड इन इरफान खान कि यार बिल्लू की सिंसियरिटी और ह्यूमिलिटी वाला जो इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इरफान खान की परफॉर्मेंस से ही निकल के आ सकता है। एंड वेल, ही वाज करेक्ट। लेकिन जब हम बात करें इरफान खान के इस फिल्म में छाने की, नॉट शाहरुख खान, शाहरुख खान ब्रॉट इरफान खान, लेकिन फिर भी शाहरुख खान ने फुटेज नहीं खाई इस फिल्म में, बिकॉज शाहरुख खान वॉज द पर्सन जिन्होंने बिल्लू को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्रमोट किया एंड ही डिसाइडेड कि ही शुड नॉट बी प्लेइंग इन द फ्रंट फुट, इट शुड बी इरफान खान जो कि इस फिल्म की लाइमलाइट लेकर जाने वाले इंसान है बिकॉज ये फिल्म उनके कैरेक्टर पर बेस्ड है। एंड सो शाहरुख खान ने अपने रोल के ऊपर फोकस करने के बजाय इस फिल्म को ऐसे प्रमोट किया कि वो बिल्लू की फिल्म है, सो दैट इरफान खान को स्पॉटलाइट मिले इवन इन इंटरव्यूज एंड प्रमोशंस। और ये दोस्ती यहीं तक नहीं थी, आगे जाकर भी देयर वाज अ टाइम व्हेन इरफान खान की तबीयत खराब हुई थी एंड ही वाज सपोज्ड टू बी ट्रीटेड इन लंदन एंड इट वाज शाहरुख खान हु ऑफर्ड हिज अपार्टमेंट इन लंदन टू इरफान खान सो दैट वो वहां रहकर अपना इलाज करवा पाए। सही कहा है किसी ने, अपनी पोजीशन से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, दिल बड़ा कर लेता है ना तो वो नजरों में अपने आप ही बड़ा हो जाता है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: बिल्लू फिल्म के गाने देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इट माइट हैव बीन वेरी इजी टू गेट दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, यू नो ऑल दीज टॉप एक्ट्रेसेस एक ही फिल्म में इतने सारे गाने करने के लिए. लेकिन बॉस, जो दिखता है वैसा होता नहीं है.
1: मिर्ची फिल्मी गुल्लक.
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड पर्दे के पीछे का सच तो ये है कि करीना, दीपिका, प्रियंका, इन सब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के स्केड्यूल्स को कोऑर्डिनेट करते करते भाई पसीने छूट गए थे क्रू के. मतलब ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ने उनको अप्रोच किया होगा या शाहरुख खान है इस फिल्म के अंदर तो ईजी रहा होगा उनका इस फिल्म के लिए गानों में काम करना. लेकिन बात कुछ और ही थी भाई. बिकॉज ऑफकोर्स जब ये बड़ी एक्ट्रेसेस हैं तो इनके पास काम भी बहुत था, और जब काम बहुत था तो इनके स्केड्यूल्स और लॉजिस्टिक्स को पूरा का पूरा मैनेज करना वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर द टीम. और इनके पैक्ड कैलेंडर्स, ओ माय गॉड, उसके तो क्या ही कहने. किसी की कब डेट मिलती थी और किसी की कब डेट मिलती थी. और फिर इस फिल्म की शूटिंग भी तो चलनी थी अपार्ट फ्रॉम द गानाज. तो फाइनली इस चैलेंज को फेस करते करते इन तीनों टॉप एक्ट्रेसेस के गाने इस फिल्म के लिए शूट हो ही गए. एंड इवेंचुअली वो हमें पसंद भी बहुत आए. कमिंग टू लारा दत्ता, हु इज द लीड एक्ट्रेस इन दिस फिल्म, वेल, उनके और इरफान खान के इमोशनल सीन्स की अगर बात की जाए ना, तो आपको पता है उनके काफी सारे ऐसे सीन्स हैं विच वर एक्चुअली इम्प्रोवाइज्ड, सो दैट ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फील निकल कर आए इन दोनों के बीच के सीन्स का. ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट, लारा दत्ता उस जमाने में जिस किस्म की एक्टर थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो बिल्लू में एक गांव की गोरी का रोल कर लेंगी. एंड माइंड यू, काम तो उन्होंने डिसेंट कर ही लिया था. एंड आई एम श्योर लारा के लिए दिस माइट हैव बीन एन एक्टिंग क्लास मोर देन अ फिल्म. नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Mirchi, it's hot.

0: सोहम की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो, इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार। और पता है ये गाना मुझे उन लोगों के ऊपर बड़ा सूटेबल लगता है जो जिंदगी की भागदौड़ में इतने बिजी रहे कि कभी मोहब्बत करने का मौका ही नहीं मिला, एंड फाइनली उनका दिल उनसे कह ही रहा है कि भाई तू भी ख्वाब सजा ले, तू भी जी ले जरा, और मोहब्बत अब तू कर ही ले। वाह क्या गाना लिखा है सोच समझ के यार।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, सोच समझ के तो मैंने भी एक कदम उठाया है, that is, मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर रोज की तरह दो गाने मैं आपके लिए उठाती हूँ, उनकी धुनों को लगाती हूँ, मिक्स करके आपको सुनाती हूँ, और फिर आपको बताना होता है कि ये दो गाने एक्चुअली है कौन से। हाँ, आपके लिए हिंट बस इतनी होती है कि ये गाने या तो 90s के हैं या अर्ली 2000 के हैं, यानी कि हम मिलेनियल वाले सॉन्ग्स ही हैं, जब हम पल बढ़ रहे थे उस जमाने के ही गाने हैं, तो पहचानना थोड़ा आसान हो जाता है। तो फिर बस जी, आपका ये जो इंतजार वाला वेट है इसको ना बढ़ाते हुए आगे मैं आपको गाने सुना देती हूँ, धुनों को पहचानो, एंड हियर वी गो।

0: ओकी डोकी, काम बस इतना करना है, डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, व्हाट आर दीज टू सॉन्ग्स, लिखकर मुझे भेज दो एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किशन कन्हैया, ये फिल्म तो हम सभी ने देखी है भैया डीडी वन पर। अनिल कपूर का जब रोल रिवर्सल होता है और जब चालू वाले अनिल कपूर जो हैं वो सिंपल वाले अनिल कपूर की जगह ले लेते हैं और रिवेंज लेते हैं ना, ओए होए, असल मूवी तो वहीं से ही शुरू हुई थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, किशन कन्हैया का ये गाना हम कैसे भूल सकते हैं। दिस वाज अ सुपर डुपर हिट हमारे दिल में। हम तो आज भी इस गाने को काफी गुनगुनाते हैं अगर किसी को देख लेते हैं सूट बूट पहने हुए तो।
3: सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को।
1: एंड वेल, द न्यूज इज कि ये गाना ओरिजिनल नहीं है बाबू मोशाय। Well, actually, the thing is, कि there's this English gana, Giacomo.
4: Bye boy, met your spy boy, sitting by the bayo.
1: जो कि 1953 में बनाया गया था by James Crawford. And this gana was also known as Sugar Boy. And boy oh boy, किशन कन्हैया का ये गाना इस English गाने से cut copy paste है या फिर inspired है, जो कहना है कह लो, but जो भी कहो, वो तो आ चुका है Thugs of Filmistan की category में। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार आज के टाइम पर भी से ना कि लेस इज मोर, बचपन में भी तो इसी पॉलिसी के साथ चला करते थे हम, जहां बड़ों ने हमें हमेशा लेस इज मोर की पटरी पर चलाया है। ये
2: है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम मिलेनियल्स, वी हैव ग्रोन अप विद द आइडिया कि जितना है यही है, इसी में काम चलाओ। स्कूल बैग अगर मिड ईयर में फट जाया करता था ना, तो मम्मा कहा करती थी कि नया बैग तो नेक्स्ट ईयर ही लेंगे, अभी इसे सिलवाकर फिक्स करवा लेते हैं और इसी से ही काम चलाओ। जूते हमारे कितनी बार सोल से जुदा हो जाते थे और हर बार मोची से फिक्स होने के लिए जाया करते थे। हम वो जनरेशन है जहां हमें खुद को कंट्रोल करना सिखाया गया है कि अगर घर में बिस्किट्स हैं, नमकीन है, तो वो तभी खाने हैं जब गेस्ट आएंगे। ऐसे मंचिंग वंचिंग के लिए नहीं चलेगा ये सारा कुछ। हाँ, प्रॉपर खाना खाओ। और अगर घर में चॉकलेट्स आया करती थी ना, तो ये बात भी फिक्स थी कि एक अकेला इंसान इसे खत्म नहीं करेगा, सबके हिस्से होंगे, बिकॉज सब कुछ लिमिट्स में ही घर में आया करता था। अनलाइक टूडे, जहाँ एवरीथिंग इज सो इजिली एक्सेसिबल कि किसी चीज को लेकर एक्साइटमेंट इस वजह से ही तो नहीं होता है कि अगर खत्म हो गई तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, बिग डील। हम क्लियरली उस टाइम में जिए हैं यार, जहाँ लेस वॉज एक्चुअली मोर। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर कूलर,
2: यादों को चिट्ठी।
1: जैसे ही गर्मी ने दस्तक दी ना, तो तुम्हारी याद अचानक दिल के कोने में ताजा हवा की तरह गूंज उठी। न जाने कितनी दोपहरियां और कितनी रातें हमने तुम्हारी हवा में काटी है। जब पूरा घर तपरा होता था ना गर्मियों की छुट्टियों में, तब तुम ही तो थे जो अपनी ठंडी सांसों से हमें राहत देते थे। तुम्हारी वो घर घर की आवाज अब शोर नहीं, अब तो वो सुकून बन गई है। तुम्हारी टंकी में पानी भरना ना किसी रस्म की तरह लगता था, और जब पानी खत्म हो जाता था तो पूरा घर जैसे बेचैन हो उठता। और तब तो पाइप से भी हम पानी नहीं भरा करते थे तुम्हारे अंदर, बाल्टियां भर भर के लाई जाती थी और तुम्हारे अंदर ढोली जाती थी। और ये काम जिसको दिया जाता था वो इंसान बेचारा परेशान ही रहा करता था। कई बार तो तुम्हारे सामने बैठकर ठंडी हवा खाते हुए हमने कितनी बातें करी हैं। आमरस पिया, टीवी देखा, अब सब कुछ जैसे एक ख्वाब सा लगता है जो कभी हमने देखा था अपने बचपन के दिनों में। कितनी बार तो तुम्हारे सामने बैठकर हम आवाजें निकाला करते थे, लेकिन तुम्हारे सामने बैठकर आवाजें निकालने के बाद समझ में आया कि टेबल फैन तुमसे ज्यादा आवाज अच्छी निकालता है, लेकिन हवा तुम ज्यादा ताजा देते हो। आजकल वैसे एसी ने तुम्हारी जगह ले तो ली है, पर उसमें वो अपनापन नहीं है। वो खस की महक, वो नमी, वो खिड़की से आती हुई तुम्हारी पुरानी आवाज, सब कुछ आज भी सोचती हो ना तो दिल एकदम खुश सा हो जाता है। घर में मुश्किल से दो कूलर हुआ करते थे, जहाँ तुम होते थे वहाँ सब होते थे, और जहाँ सब होते थे वहाँ खूब बातें होती थी। अब तो हर कमरे में एक एसी लगा हुआ है, सब अपने अपने कमरों में चुपचाप जाके सो जाते हैं। वो इकट्ठा होकर साथ बिस्तर लगाकर सोने का फन जो है ना, वो खत्म सा हो गया है। तुम तो ऐसे थे जैसे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग, जो जब तक थे तब तक सब साथ थे, जब चले गए तो सब अपने अपने हो गए। खैर, तुम्हारी याद जो है वो तो आज भी दिल में बहुत ताजा है, और इन गर्मियों में तुम्हें और तुम्हारी उस आवाज को याद करती हुई मैं सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाठ दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म मेरे यार की शादी है इज कैसेट के साइड ए का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: स्कूल में भले ही हम कभी भी टाइम पे ना जागे हो, लेकिन हमारे अरमान बड़े होते होते बहुत टाइम से जाग जाते हैं। जहाँ कोई सही इंसान देख नहीं जाता ना, जागे जागे अरमा हो जाता है। एंड दैट इज हाउ ये गाना निकल के आता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम दिस फिल्म कि यार मुझे मतलब मूवी देखते देखते काफी नींद आ रही थी, ऑल्सो बिकॉज मैंने एक दवाई ली थी, मुझे जुकाम हो गया था तो मैं सो गई थी बीच में, लेकिन इस गाने के दौरान मैं जरूर उठी थी यार। इट्स सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, द कॉम्पोजिशन, द पिक्चराइजेशन, एंड ऑफकोर्स जिमी शेरगिल की तो मैं फैन थी उस टाइम पर, क्योंकि वो मुझे शाहरुख खान जैसे लगा करते थे, इस वजह से मैं उन्हें बहुत पसंद किया करती थी। तो ये गाना जो था ना, इट वॉज अ पैकेज डील फॉर मी एट दैट टाइम। लेकिन इस गाने की ना एक बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन है जो एक्चुअली इज ट्रू। अगर आप मोहब्बत में पढ़े हैं तो ये आपके साथ भी हुआ होगा। बताती हूँ आपको कौन सी लाइन है। कहते हैं कि चुप रहना चाहा था, रह ना सके, फिर भी जो कहना था कह ना सके। ये बात सच है। जब आप किसी से मोहब्बत में होते हो और जब आप उस इंसान से मिलते हो तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना कि आप बस ब्लैबर कर रहे होते हो, ना जाने कितनी सारी चीजों के बारे में आप सिर्फ बात किए जा रहे होते हो। एंड देन घर आने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार वो जो सारी चीजें मैं सोच के गई थी कि यार ये बोलूंगी उससे, वो बोलूंगी उससे, यू नो आई वॉन्टेड टू बी अ बिट रोमांटिक एंड आई वॉन्टेड टू से समथिंग नाइस टू हिम, वो तो मैं कह ही नहीं पाई। ये सच है, ऐसा होता है। पता नहीं ऐसा क्या होता है यार इस मोहब्बत में कि जब आपको होती है और जब वो इंसान सामने होता है तो आपसे बोला नहीं जाता। दुनिया की सारी तबाही आप बोल दोगे लेकिन अपने दिल की बात नहीं बोल पाओगे। और जब अकेले में हो तो फिर उस इंसान से बैठ के बातें कर रहे होते हो जबकि वो आपके सामने भी नहीं होता। धत, मोहब्बत भी क्या चीज है, नहीं क्या। चलो जी, जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ। आप एंजॉय करिए इस ट्रैक को एंड हम है रही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। लेकिन यहाँ के अलावा मैं आपको मिल जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।
3: Mirchi, it's hot.

0: Energy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे, फिर तू ले जा अपने

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफ कोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की। एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। ये तो भाई एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है, तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी, एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया। कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए। जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए, लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको? ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बन करके पता है किसने किया था? D.A.R. रहमान। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट सुरमई अखियों, ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से एंजॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स ना मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हु सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि ये शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर से वो टाइम आ गया है जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था, यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं रोल पहले करने वाली थी डिंपल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोप इन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माई हैंडल इज RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना, तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ, इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। गुड नाइट।
1: दीवाना

0: यार हमारे दोस्तों को अप्रिसिएशन के नाम पे सांप क्यों सूंघ जाता है?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं, नॉट एवरीबडी फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी, बट हाँ कुछ दोस्त जरूर हैं जो इन जनरल अपने आसपास अगर देखते हैं कि बहुत पॉजिटिव सा कुछ हो रहा है, कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सा कुछ कर रहा है तो उसको फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ को भी थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अप्रिसिएशन, स्पेसिफिकली अप्रिशिएटिंग अपने किसी दोस्त का काम, तो भाई इनको सांप सूंघ जाता है, ये चारों खाने चित हो जाते हैं। कहां ये कल तक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से इंस्पिरेशन लेते थे, आज तो ये गांधी जी के एंटी बंदर बन के बैठ जाते हैं, जो अच्छा ना देखते हैं ना सुनते हैं ना बोलते हैं। सो बेसिकली सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म का नाम है कर्तव्य, जो 15th ऑफ मई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, राइट? और इस फिल्म में उनकी जो कोस्टार है रसिका दुग्गल, उनके अप्रिसिएशन में सैफ अली खान ने बजाबते कहा है दैट ही थिंक्स दैट ही इज अ बिग फैन ऑफ रसिका। भाई ये दोनों तो आपस में दोस्त भी नहीं है, दे वर जस्ट कोस्टार्स, तब इस तरीके की अप्रिसिएशन आ रही है। हमारे दोस्त नामुराद क्यों हो जाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे माइंड यू, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है रेड चिली एंटरटेनमेंट, विच इज ऑफ कोर्स शाहरुख खान एंड गौरी खान का प्रोडक्शन हाउस। So I guess you should mark your calendars for the 15th of May. Mirchi pe main hoon Shruti, aapke saath. Stay tuned, it's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा।

0: यार मेरे हिसाब से ये भगवान का दूसरा रूप नहीं, साक्षात भगवान ही है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं हमारी माओ की बात कर रही हूँ, और स्पेसिफिकली हमारी माओ से अगर हम फोकस शिफ्ट करें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की माओ के ऊपर, तो एक टाइम था जब फिल्मों में माँ को काफी वीक, वल्नरेबल, फ्रेजाइल सा पोर्ट्रे किया जाता था, बट विद चेंजिंग टाइम्स थिंग्स आर चेंजिंग एंड द कैरेक्टर्स ऑफ माँ इज वेल। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही एम्पावर्ड माओ की बात कर रही हूँ। सो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट सीक्रेट सुपर स्टार से नजमा की, जिनके घर में नजमा और उसकी बेटी दोनों के पर्सनल चॉइसेस जो होते हैं उसको खत्म कर दिया जाता है, बट शी लर्न्स टू फाइट बैक एंड ऑल्सो मेक श्योर कि उसकी बेटी के जो एम्बिशंस हैं उसको वो परस्यू कर पाए। अब चाहे उसके लिए नजमा को किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी झेलना पड़े। मूविंग ऑन, नंबर पांच पे बात करना चाहूंगी नीना गुप्ता की फ्रॉम द सीरीज मसाबा मसाबा। नीना गुप्ता और मसाबा गुप्ता रियल लाइफ में भी माँ बेटी हैं और उन्होंने अपने बॉन्ड को पोर्ट्रे किया रियल लाइफ में भी। हाँ, उन दोनों के ओपिनियंस जनरली सेम नहीं होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। नीना गुप्ता फ्रॉम येलिंग एट मसाबाज इन्वेस्टर टू फाइनली कमिंग अराउंड हर चॉइसेस, एंड बाय द एंड नीना गुप्ता को पता होता है कि आफ्टर ऑल उसकी बेटी को क्या चाहिए, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल, उससे ज्यादा मैजिकल और क्या हो सकता है यार। सो या, थैंक्स टू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फॉर चेंजिंग द पोर्ट्रेयल ऑफ मदर्स। बाकी आप भी इस लिस्ट में किसी ऐसे ही माँ वाले कैरेक्टर को ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। ऑल यू नीड टू डू इज कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुश खुश खुश खुश
1: ओ ए खाबो की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ ओ ए आंखों ही आंखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुश खुश खुश खुश खुश ओ ए खाबो की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़